सौ पांच त्रित्र समापत मस्त शुभ मास अफजून दोहरा दास जान कर दास पार की जय कृपा अपार आप हा दया राख मुहे मन कराम बचन विचार चाओ पई मैं नागने सहे प्रथम नाऊ किसन बेसन कब हूं न त्याऊ कान सुने पहचान नतन सो लिव लागी मोरी पाग इन सो

नाम मुद्या प्रात परिया चुन चुन सतर हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चल राखिया मुहे और न दल तुम मम कर हो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा जान अपना मुझा निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दाह जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तुहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरिन संगारो प्रथम धरो भगवत को त्याना बहुर करो कविता बिदनाना कृष्ण जथा मात चरित्र उचारो जूक हो काब लेहो सुधारो कबिउ बाच दोहरा जो निज प्रभ मो सो कहा सो कहे हो जग माहे जो तेह प्रभ को तिहाय है अंत सुर को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार कश नाहे जल ते उपजत रंग ज्यो जल ही बिखै सुमाहे दोहरा जाब आए स प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सबहू कैद सुनाए कब बाच दोहरा ठाड़ भयो मैं जोर कार बतन कहा सिर न्याए पंथ चला तब जगत मैं जाब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तमरे ते हन को नेत उठते हैं संत अंत लहेंगे मुगत फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरु की देह मो कोट कबेसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सास करोर दिलेश दोहरा राम कथा जुग जुगिया टल सब कोई पहाख नेत सरग बास रगबर करा सगरी पुरी समेत चाव पाई जो यह कथा सुने अरगावै दुख पाप तिह निकट न आवै बेसन भगत किए फल होई आदि ब्याज शिवै सकै न कोई सम्मत सतरह सच पचावन हाड़ वधि प्रथम सुख दावन

दोहरा साद असाद जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण की यो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहें गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक ना माने ओ सिमरत सातर वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कार मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा सगल दुआ

अंतर गुरे आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रमणी सुनना गुर नाओ।

अहनस सहज सुभाई दर्शन परसया गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी देव गंधारी पंजवा

इस प्रकार भट साहबाना ने पावन बाणी दे विच बचन उचारण कीते ने। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास की कथा विचार चल रही है। एक गुरु का प्यारा सिख, श्रद्धावान सिख,

0: हां जी, सतगुरु जी कहिंदे ने कि बहुता ज्यादा जे रज लैणा करे ते फिर सतनाम वाहिगुरु दा सिमरन नहीं हुंदा, फिर चौंकड़ा नहीं मारिया जाणा, समाधि नहीं लगनी।
1: सास सास जप बिसर न इक छिन।
0: हां जी, सतगुरु जी बचन कहिंदे ने कि बहिंदिआं उठदिआं, उठदिआं बहिंदिआं, ऊठत बैठत सोवत त्याईऐ, मार्ग चलत हरे हर गाईऐ। ए सतगुरु जी ने बचन कीते के उठद्या बहिंद्या सुत्या सदा सदा हर नाम त्याईऐ, जन नानक गुरमुख हर लहीऐ। तो गुरमुखां दी अवस्था ए सतगुरु जी ने दसी है। सतगुरु जी दे बचन बड़े सुंदर ने। गुरु के सिखो सदा वास्ते बेनती करते रहिए कि सतगुरु जीओ, ए जेडे बचन ने ना, ए आप जी दे बचन असी कलयुगी जीवां दे हिरदयां दे विच वस जान, लोक सुखीए परलोक सुहेले होइए, सदा वास्ते ए कृपा करो जी। आप जी दे पावन बचन हान होए, एकत्र मिलहो मेरे भाई, दुबदा दूर करहो लिव लाए, हर नामे के होवहो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा विछाए। सतगुरु जीओ ए कृपा करो के विसर नाही दातार, अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो। ए कृपा करो जी, दिन रात आप जी दे गुण गायन करदे रहिए, सेवा सिमरन करदे रहिए, ता साडा जीवन सफला होवेगा। ए थोड़ी जी समझ सतगुरु जीओ आप जी दी संगत दे विचों प्राप्त होई है। आओ जी, इस तो उपरंत ढाडी जथे दे पासों आपां गुरु का पावन इतिहास अते ढाडी वारा सरवण करके लाहे प्राप्त करांगे। दस रहा पासों गुरु के पावन इतिहास दी विचार करदियां होईयां बेअंत भुलां दी मुआफी बख्शनी जी सतगुरु जी, अते सतगुरु जी दी साध संगत बख्शन हार है, लेखै कतहि ना छूटीऐ, खिन खिन भूलण हार, बख्शन हार बख्श लै।

0: कहना बहुत वार गुरबाणी चे पाठ तुम्हारी भी उचारण है पर इथे महाराज जिया ने हलंत लाई है भारा उचारण करना शरम शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ
1: अष्टपदी।

तो उच्चा उठ गया। मौत दा भय सामने रख के इस तरह दे पुरुष नूं डराया नहीं जा सकता जिसकी शक्ति सब दिष्टान तो उपर उठ गई है। दरअसल डर विच जीण वाला मनुख इस गल दा सबूत मुहैया कर रहा है कि सब दिष्टान तो थले जी रहा है। भगत कबीर कहिंदे ने, कहत कबीर राम गुण गाओ आप न डरो न अवर डरा। मैं उस दुनिया विच पहुंच गया जिथे ना मैं किसी तो डरदा ना ही किसी नूं डरांदा। अक्सर उही मनुख दूजियां नूं डरांदा है जिहड़ा किसी तो डरदा है, क्योंकि भयभीत होया मनुख ही अगले नूं भयभीत करदा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज भी परम ज्ञानी दे लक्षण यही दसदे ने, भय काहूं को देत ने नै भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। वास्तविक परम ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ओही है जो भय दी दुनिया तो उच्चा उठ गया है, ना डरांदा है ना डरदा। सब दिष्टान चक्र नु विन के जैसे शक्ति उपर उठती है, भय दी दुनिया खत्म, निर्भय दी दुनिया शुरू हुई। निर्भय केवल परिपूर्ण परमात्मा। साहिबां दी बाणी दा फरमान, डर पे धरत आकाश निखतरा सिर ऊपर गगन करार। पौन पानी बैसंतर डर पे इंद्र विचारा। एका निर्भव बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुरमुल गाए गुनी। सतगुरु दा ते इत्थे तक फरमान है कि सूक्ष्म रूप दे ग्रह निछत्र सूरज चंद तारे सब डरे हुए ने, पै दे च ने, डर दे च ने, मर्यादा दे च ने। तमाम जीव पशु पंखी मनुख डर दे च ने। ये ठीक है कि डर मर्यादा दे च रखण वास्ते चाहिए, लेकिन हर वक्त मनुख डरिया होया अपना मानसिक संतुलन गवा बैठता है। किधरे मैं बीमार ना हो जावा, किधरे मैं मर ना जावा, किधरे मेरा कमाया हुआ धन नाश ना हो जाए, बनी बनाई प्रतिष्ठा मेरी खत्म ना हो जाए, किधरे मेरा रुतबा कोई खो ना लवे, किधरे जंग देच या मुकदमे देच मैं हार ना जावा। ये भय मनुख नु बनिया रहिंदा है। सब दिष्टान चक्र नु विन के जैसे जीवन चेतना जीवन शक्ति उपर उठती है, ये भय दी दुनिया खत्म हो गई, निर्भय दी दुनिया आरंभ होई। और परिपूर्ण परमात्मा चूंकि निर्मल है, हुण उसदा ही भय शुरू होया, भाव उहदी गल मनण दा अंदर चाव पैदा होया। इसे नूं सतगुरु कहिंदे निर्मल भाव पाया हर गुण गाया हर वेखे राम हदूरे। परमात्मा आप निर्मल है, उहदा भय भी निर्मल है। जगत मैला है, जगत दा भय भी मैला है। जगत दा भय जिस दे अंदर है वह निर्मल नहीं हो सकेगा, ते परमात्मा दा भय जिस दे अंदर है वह मैला कदी नहीं हो सकेगा, सदीव निर्मल होवेगा। बाबे फरीद दे श्लोकां दे साहिब गुरु अमरदास जी महाराज दा एक परम पावन श्लोक है, भय पईए तन खीण होए, लोभ रत विच्चों जाए ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का भव दुरमत मैल गवाए। जिस तरह अगन सोने दी तमाम खोट नूं कढ़ देंदी है, रब्बी निर्मल भय मनुख दे तमाम विकारां नूं शांत कर देंदा है, मनुख दे तमाम पतत संस्कारां नूं खत्म कर देंदा है। तो सब दिष्टान चक्र नूं विन के जैसे जीवन चेतना उपर उठी, मौत दा भय खत्म हो गया। किसे प्रकार दे भय दा जिहड़ा बोझ सी ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਦੁਨੀਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਉਤਰ ਗਏ। ਜਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਪ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ? ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੱਕ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ ਤੱਕ, ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਤੱਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਰੂਰ, ਉਸਦੀ ਮਸਤੀ, ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗਲਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।

आकार तो रहत कोई आकार नहीं, सारा आकार उस तो आउंदा है जेदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उसे तो आउंदे ने जेदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उसे तो आउंदे ने जेदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है, उस शक्ति नू अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसी ने गोपाल किया, किसी ने गोविंद किया, किसी ने राम किया, किसी ने करतार किया, किसी ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहिगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहिंदे ने मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है, सूरज नू सन कहिंदे ने, सूरज नू भान कहिंदे ने, सूरज नू रवि कहिंदे ने, सूरज नू सूरज कहिंदे ने, सूरज नू खुर्शीद कहिंदे ने, सूरज नू आफताब कहिंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दियां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने, सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामां ते झगड़ा है, सूरज दे नामां ते ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे च भान कहिंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहिंदे ने, दो नाम ने, रवि ये भान है, ये रवि है, ये सूरज है, ये आफताब है, ये खुर्शीद है, ये सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है ओही आफताब है, जो आफताब है ओही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है ओही सूरज है, जिहड़ा सूरज है ओही भान है, जिहड़ा भान है ओही रवि है। सानू कबूल है, पर जिहड़ा खुदा है ओही राम है, जिहड़ा राम है ओही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है ओही गोबिंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाने पुरुष की कहिंदे ने, जितनी अज्ञानता धर्म दी दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थव्यवस्था दे च और राजनीति दे च नहीं है, जितना अज्ञान धर्म दी दुनिया च। समाज दे संबंधां दे च, अर्थव्यवस्था दे च, राजनीति दे ते इतनी मूर्ता नहीं है जितनी मूर्ता धर्म दी दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान दा पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ज्ञान दे स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहिंदे ने ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम विभूत लगा। इक्को ही पुन है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। इक्को ही पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनूं पूर्ण खुलासे दे रूप ते किसे वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा। परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नूं दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे च इक ऋषि होया जिहदा नां सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां, अगर हजारां बावां एक बंदे दी आउण ते सारे हाल च मेरे खले कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाहु, दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत, दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हत्थ जुड़ जाण उसदे अगों, तो सहनसर बाहु हो गया और की है। ओ देखो हजारां बंदे हाथ जोड़ के खड़े हो गए।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहे हैं। ये सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ये बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ये अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: WPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इन्हां सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: पूरे गुरु का सुन उपदेश
1: बार ब्रह्म निकट कर पेख
0: सा सा सिमर हो गोबिंद
1: मन अंतर की उतरे चिंद
0: आस अनित त्याग हो तरंग
1: संत जना के तुहर मन मंग
0: आप छोड़ बेनती करहु
1: साथ संग अग्न सागर तरहु
0: हर तन के भर ले हो भंडार
1: नानक गुरपुरे नमस्कार
0: खेम कुशल सहज आनंद
1: साथ संग पर परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
0: चित चित्त हो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का एह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन
1: अमलीक लाल एह रतन
0: संत कमाप्त होत उधार
1: आप त्रैलोक कै निस्तार
0: सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागा हर रंग
0: जय जय शब्द अनाहत बाजै
1: सुन सुन अमित करे प्रभु गाजै
0: रखे गोपाल महांत कै माथे
1: नानक उदरे तिन कै साथे
0: शरण जोग सुन सरनी आए
1: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
0: मिट गए बैर भय सब रीन
1: अमृत नाम साध संग लैन
0: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
1: पूर्ण होई सेवक की सेव
0: आल जंजाल विकार के रहते
1: राम नाम सुन रसना कहते
0: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
1: नानक रवि खेप हमारी
0: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चीत
0: सुख मनि सहज गोबिंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सहोत निधान
0: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
1: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
0: सब ते ऊच पाए स्थान
1: और न होवे आवन जान
0: हर तन खाट चले जन सोए
1: नानक जिसे प्राप्त होए
0: खेम शांत रिद नव निध
1: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
0: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
1: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
0: चार पदार्थ कमल प्रकाश
1: सबके मत सकल ते उदास
0: सुंदर चतुर तत् का बेता
1: समदर्शी एक दृष्टेता
0: ते फल तिस जन कै मुख भने
1: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
0: केहो निधान जपै मन कोए
1: सब जुग मैता की गत होए
0: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
1: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
0: सगल मतांत केवल हर नाम
1: गोबिंद भगत कै मन बसराम
0: कोट अपराध साध संग मिटै
1: संत कृपा ते जमते छुटै
0: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
1: साध शरण नानक ते आए
0: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत
1: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
0: जन्म मरणता का दुख निवारै
1: दुर्लभ दे तत्काल उधार
0: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
1: एक नाम मन माहे समानी
0: दुख रोग बिन से भय भरम
1: साध नाम निर्मलता के कर्म
0: सत्य ऊज ताकी शोभा बनी
1: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

उडुड़ावा चाटे पाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे तालाब छाड़े धरती नार गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सचना।

दे मंगेशे सगुण छोकरे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रबा बेकार एक होंदा खाचले जाओ तिना भी कई कार जल था जिया पुरिया।

पौड़े बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी जुट पजा खानी सेक जा सोमत जाने नान का सारा मेरा जनता नाग जंतु पाए कैसा माले सबनहा जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता सो कर

0: पहला पर गड्डी लदी है पर भरिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड्डिए खात पढ़िए है जेते वर्ष बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल होर हो में जखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कढ़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या।

0: काल पूर्व कल काल बेताल बियो बीज बतले के अब क्यों बेदाल जे को रुत होए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैबज खुम चढ़ाइए सनु पतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए दा कोए
1: मोहल्ला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार तरनी तर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठन कोई आख है पत प्रवण पिछे पाइये ता नानक तोलिया जापे
1: महला जिस जिगनान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया।
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप भक्त करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सतिये फिर पाया हो रे नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिये पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

ओडिशा महोदयाल कृपा करता सही कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक।

नानक कूड़ रहया प्रभो। मथे टिका तेड़ धोती का खाई, हाथ छुरी जत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रभा।

महला पहला जे सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूत।

पौड़िया पे करणा की कला पे हित धारिये देख कि अपना तर्क चिपकी सारिये जो आया सो चल सी।

होड़ी चक्कर लगे चक्रे जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगलियो वजो पी दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वचो गवाए अगला मोहे मोहे पाणा खाए जिसदा दिता खावना तिस कहिया शाबाश नानक हुकम ना चले नाल खसम।

आपे पांडे साजन आपे पूरुंदे इक नी दुद्ध समाई एक चुले बैं चढ़े इक ने हाली पैस वाली गुपुर खड़े तिना सुवारे ना।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: Surang pa surang sarabda sarabjugte dukalang pranasi dayalang sarupe sada ang sange apangang bepute dukalang pranasi dayalang sarupe sada ang sange apangang bepute Waheguru Ji ka khalsa Waheguru Ji ki fateh ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ ਸਰਾਵਕ ਸੁੱਧ ਸਮੂਹ ਸਿਧਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰਯੋਗ ਘਰ ਜੋਗ ਜਤੀ ਕੇ ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁੱਧ ਸੁੱਧ ਆਦਿਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮੱਤੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ ਕੋ ਦੇਖ ਰਾਇਓ ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਅਤ ਪਾਣ ਪਤੀ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸੁਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸਕੂਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੁਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਪੁਜਹਨ ਕੇ ਪੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੂੰ ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕਉ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਿਸਾਨ ਕੋ ਬਾਜ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਹਿੰਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ ਕੌਣ ਗਣੈ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕਉ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸਿਧਾਰੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਨ ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ ਸੋ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਬਸੇਖ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਜਮੀਨ ਜਮਾਨ ਸਬਾਨ ਕੇ ਪੇਖੈ ਪਾਉਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ ਸਭੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰਕ ਦੇਖੈ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲੇਖੈ ਸੁਧ ਸਪਾਹ ਦੁਰੰਤ ਦੁਬਾਹ ਸੋ ਸਾਜ ਸੁਨਾਹ ਦੁਰਜਾਨ ਦਲੈਂਗੇ ਭਾਰੀ ਗੁਮਾਨ ਭਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਪਰਬਤ ਪੰਖਲੇ ਨਾ ਹਲੈਂਗੇ ਤੋਰ ਅਰੀਨ ਮਰੋਰ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗਨ ਮਾਨ ਮਲੈਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਪਾਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨ ਤਿਆਗ ਜਹਾਨ ਨਿਦਾਨ ਚੱਲੈਂਗੇ ਵੀਰ ਅਪਾਰ ਵੱਡੇ ਬਰਿਆਰ ਅਬਚਾਰ ਹਿਸਾਰ ਕੀ ਧਾਰ ਪਛਈਆ ਤੋਰਤ ਦੇ ਸਮਲਿੰਦ ਮਵਾਸਨ ਮਾਤੇ ਗਜਾਨ ਕੇ ਮਾਨ ਮਲਈਆ ਗਾੜੇ ਗੜਹਨ ਕੇ ਤੋੜਨ ਹਾਰ ਸੋ ਬਤਨ ਹੀ ਚਾਕ ਚਾਰ ਲਵਈਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਭ ਕੋ ਸਰਨਾਇਕ ਜਾਤਕ ਅੰਡੇਕ ਸੁ ਏਕ ਦਿਵਈਆ ਦਾਨਵ ਦੇ ਫਰਿੰਦਨ ਸਾਚਰ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਜਪੈਂਗੇ ਜੀਵ ਜੀ ਤੇ ਜਲ ਮੈਂ ਥਲ ਮੈਂ ਪਲ ਹੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਥਾਪ ਥਪੈਂਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪਨ ਬਾੜ ਜੈਰਤ ਹੁਣ ਪਾਪਨ ਕੇ ਬਹੁ ਪੁੰਜ ਖਪੈਂਗੇ ਸਾਧ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਫਿਰੈ ਜਗ ਸਤਰ ਸਵੈ ਅਵਲੋਕ ਚਪੈਂਗੇ ਮਾਨਵ ਇੰਦਰ ਗਜਿੰਦਰ ਨਾਦਪ ਜਾਉਣ ਤ੍ਰਿਲੋਕੋ ਰਾਜ ਕਰੈਂਗੇ ਕੋਟ ਇਸਨਾਨ ਗਜਾਧਿਕ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਸੁਵੰਬਰ ਸਾਧ ਬਰੈਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਬਿਸਨ ਸਤੀ ਪਾਤ ਅੰਤ ਫਸੇ ਜਮ ਵਾਸ ਪਰੈਂਗੇ ਜੇ ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦ ਕੇ ਪ੍ਰਸ ਹੈ ਪਾਗ ਤੇ ਨਰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਹਤ ਰਹਿਗੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲੀਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਮਾਸ ਕੀਓ ਬਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹਾਂ ਸੁਣ ਲੇ ਸਭੈ जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, काहू ल पाहा न पूज धरियो सिर, काहू लिंग गिर लटकायो, काहू लखियो हर अवाची दिसा मह, काहू पिशा को शीस निभायो, तुब तानक पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर जीव सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो, कोब तानक पूजत है पास को मृतानक पूजन तायो, कूर क्रिया उर जीव सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कवि बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दया रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मंदिर है हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दुष्ट सबैत मकावा हो, आपहा दया मोहे बचाव हो, सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निधि कर दया करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण हो हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है शाड कोई अवर न त्याऊ, जो अवर चाहो सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारी आहे, चुन चुन सत्र हमारे मारी आहे, आप हाथ दैब जै उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हुजू सदा हमारे पच्छा, श्री हस्तुजू करी अहो रक्षा, राख ले मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीट बांध दुष्टन के हंता, तमोहो पुरी चतुर्दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैज छन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बाध कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरी अस्थूला, सब प्रकृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पछान, कट कट के पढ़ पढ़ की जान, जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तहरत तब देह अपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, द्रंका द्रिब का निर्लंब, आद अनिल अनाद संभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताकाओ कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत, महादेव काओ कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्हत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेर जसेत दखीनी, उत्पुज खान बाहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा, सिगरी सृष्ट दखाय चम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार असिख संगरो, दुष्ट जेते उठ वल उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे आस तुजता वसर नहीं परे, इनके दुष्ट दुखत हुआ मरे, पुरख जामन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए है, ताकि काल निकट न है, रक्षा हो ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टारै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहारिहु, ताके ताप तनक मह हरिहु, सिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह शुवै सकै ना कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम ते हारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ केत मैं सरण तिहारी, आप हाथ दलिहो उबारी। सर्ब ठार मोह सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छह करता। श्री अस्त हो जा पहे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाशत फल पावे सोई, दुख न तस व्यापत कोई अडिल। सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकट ना तेरे नर के रह, हो जो या की एक बार चाओ पई को कह। चाओ पई संबत सत्रह सहस पणिज, अर्ध सहस फुन तीन किहिज। भाद्रव सुधी अष्टमी रवि वारा, तीर्थ अद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब, बह भेद कह हम एक न जाने। श्री अस पाण कृपा मरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखाने। दोहरा

0: एक ओंकार सदगुरु प्रसाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक नौकम समाय एक नौकमे करे विनाश।

कृत नचे सब कोई नच नच हस है चल है से रोए उड़ न जाई सिद न होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ।

क्यों? ये विधान खुदा दा है, मेरा नहीं। ये नियम उस दा है। मैं उस दे नियम दे च मुदाखलत नहीं कर सकता, मेरी पहुंच ही नहीं है। संत दा कम है, फकीर दा कम है उस दे नियम दी जानकारी करा दे, बस इतना। उदा धर्म, धर्म तो मुराद मर्यादा दी जानकारी करा दे। संत उस दे नियम नु बदल नहीं सकता, संत उस दे नियम दी जानकारी करा सकता है। इस वास्ते वो कह रहे है, यार रा खुद करदा रा इलाज नेस्त, करदनी ख्वाहिश ओ आमदनी पेश, जो तू कर चुके हैं भोगन ली तैयार हो जा, मेरे को इसका कोई इलाज नहीं। धन गुरु नानक देव जी का बोल थोड़े सामने रखा, इंज कह लो, इस युग दे अवतारी पुरुष का फैसला, भाई रे मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप, सब हर के वस है लाग सके ना बिन हर के लाया। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मत कोई जानो अवर किसी के किच हाथ है, किसी दे हाथ च कुछ भी नहीं है। जो तू कर्म कीते ने उन्हां दा ही रब्बी फैसला तेरी चोली च पे है, और कुछ भी नहीं। कोई किसी नूं सजा भी नहीं दे सकदा, हां दिखाई देंदा है उन्हें चोट पहुंचाई है, उन्हें चोट पहुंचाई है। कोई नहीं देता किसी को सजाएं, सजा बन के आती हैं अपनी खताएं। अक्सर ही ऐसा होता है, एक संत नूं समझ आ जाती है। मैं पढ़ रहा सी एक दिन इतिहास, महात्मा बुद्ध चल रहे सन ते पत्थर नाल ठोकर खा के गिर गए। उठदे सार फिर पत्थर नूं नमस्कार पे कर दें, नाल उन्हां दा चचेरा बिरा आनंद सी, कहन लगे इस पत्थर नूं ये चुक के परे सुटिए। उन्होंने वाकई चुक के एक पासे भी कर दिता, ये कोई मत्था टेकण दे लायक है, थोड़ा पैर जख्मी कर दिता है। महात्मा बुद्ध कहंदे आनंद, एक कर्जा सी निबड़ गया, निबड़ गया, तू हुण होर कर्जा ना चढ़ा मेरे ते। एक कर्जा सी मेरा निबड़ गया, इस जख्म लगे निबड़ गया, नहीं तो छोटी जी चोट भी शायद किधरे अगले जन्म का कारण ना बनती, निबड़ गया। मैं इस वास्ते धन्यवाद कीता है, ऐ पत्थर इस जिंदगी च मिल गया चंगा है, एक बार ले गया। इस तरह के सोचने वाले भी हैं। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, तू लिखिया होया की है, करमे करमे होए विचार, सच्चा आव सच्चा दरबार। चूंकि कर्मानुसार दुख ते सुख है ते बनाया परमात्मा दा नियम है, इस वास्ते भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च, नियम ते तेरा बनाया, कोई साडा थोड़ी बनाया। भगतां दी गल समझ दे च नहीं आई, जद भगत कहते सब कुछ तेरे हाथ च है, तो तेरे हाथ तो मुराद ये नियम तू बनाया, असी नहीं बनाया, साडा कुछ भी नहीं है, ये नियम तेरा बनाया। इस वास्ते सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। नानक हुक्मे जे बुझे ता हाँ मैं कहे न कोई, जिसनों इस हुक्म दी समझ आ जाए कि संसार एक मर्यादा है और एक लीला है, एक तमाशा है, लेकिन लीला ते मर्यादा दे कर्म दी जिम्मेवारी सिर्फ मनुख दी है, ए भी उसकी लीला, ए भी उसकी मर्यादा, पशु दी जिम्मेवारी नहीं है। अगर पंछी दरख्तां तो फल खा जांदे ने ते दरख्त किसी बागवान दे ने, चोरी दा इल्जाम उन्हें नहीं आयद हो सकता, प्रकृति वालों इस तरह की उन्होंने खुल है। ये नहीं कह सकते ये चोरी की थी।

इस पंक्ति विच अरजोई है, बेनती है, सारा शब्द बेनती है, अरदास है। कीती हुई साधना, कीता होया जप तप, वही सफल है जो मनुख नू अरदास तक ले जाए, बेनती तक ले जाए। कुछ धर्म ते ऐसे ने, जैसे ईसाई, भी चर्च क्यों जा रहे हो? प्रेयर करने जा रहे हैं, अरदास करने जा रहे हैं, सिर्फ अरदास करने जा रहे हैं। साढ़े च ऐसा नहीं, कीर्तन सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, गुरु दे दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, सत्संगियां दे दर्शन करने जा रहे हैं, सेवा करने नहीं जा रहे हैं, पुण्य करने नहीं जा रहे हैं। ये सब कुछ कीता होया, पुन सुने होया, कीर्तन

सुन सुन के कथा सुन सुन के बाणी पढ़ पढ़ के पाठ कर करके उन अरदास नहीं निकलती दिल दी गहराई च। और जदों ये अरदास निकल दी है फिर व्यर्थ भी नहीं जाती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराई चो जिहड़ी अरदास निकली है खुदा तक पहुंचेगी। इसे नु गुरबाणी कहती है बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। सारे शब्द विच एक अरदास है यक अर्ज असी अरदास कहने हैं। परशियन विच कहने ने अर्जोई करने अर्ज करने अर्ज करने अर्जोई है। संस्कृत विच हिंदी च कहने ने प्रार्थना करनी है प्रार्थना करनी है। फारसी च कहने ना अर्ज करनी है अर्जोई करनी है। गुरु नानक ने एक शब्द नो जन्म देता है अरदास करनी है। ते अरदास दे जो मैं अर्थ समझे ने ते पढ़े ने अर्जे दास्त हाथ जोड़ के अर्जोई करने दस्त बस्ता हथां नू जोड़ के अर्जोई करने बेनती करने प्रार्थना करने। सतगुर कहंदे ने यक अर्ज एक मेरी अर्जोई एक मेरी प्रार्थना एक मेरी अरदास। यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर गोश कुन करतार गोश कन्ना नू कहंदे ने ऐ करतार जे तू कन ला के सुने। मनुख जिथे आंदा है उथे ही उसके कन आंदे ने। घर विच बैठी है मां ते सानू कुछ सुनाना चाहे नहीं सुन सकते क्योंकि असी जिथे बैठे हैं कन उथे ही ने। जिथों सानू सुनाया जा रहा उथे साडे कन कोई नहीं। मनुख जिथे आंदा है उसदिया इंद्रियां उथे ही आंदियां उसकी जबान उथे ही आंदी है उसदिया अखां उथे ही आंदियां। जिथे है उथे ते वेख सकदा है जिथे नहीं है नहीं वेख सकदा। जिथे है सुन सकदा है जिथे नहीं है नहीं सुन सकदा। मनुख जिथे है उदे ज्ञान ते जद व्यापक है ते उदा सुनना भी व्यापक है। किसे थां भी अरजोई कीती जा सकती है किसे थां। परमात्मा व्यापक है उदा वेखना भी व्यापक है। पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जानिया दूरी रे हे प्रभु तू कन कर भाव सुन। हे करतार हे सृष्टि दे रचनहारे एक अरजोई एक बेनती है। फिर अगलियां पंक्तियां च जिस दे अगों बेनती कर रहे हैं उसकी महिमा बयान कर देना जी।

0: निर्मल हैं, निर्विकार हैं और सृष्टिदा कर्णहार हैं, तू हक हैं, तू कबीर हैं। इस तरह मेरे पादशाह उस प्रभु की अरदास दिच जो है महिमा गायन कर रहे हैं। हां जी,
1: दुनिया मुकमे पानी तहकीक दिल तमी।
0: हे प्रभु, मैं ते अपने दिल नो समझाना, ये जगत फानी है, नासवंत है, तू हक्का है, जगत ते झूठ है, छाया है, तू कबीर है, ये सब कुछ ते तुच्छ है, बेमैनी है। दुनिया मुकामे फानी, ये जो टिके होया जगत दिसदा पे है ते मिट जाएगा, ये ते फानी है, नासवंत है। ऐ मेरे दिल, तू ऐसा जान, हे प्रभु, हे करीम, हे हक्का, मैं अपने दिल नो ऐसा समझा रहा, ऐसा कह रहा, सब कुछ नासमंद है। किसी वक्त खुलासा करांगा, धर्म दा प्रभु दा सारा ज्ञान मौत दे ज्ञान तो आरंभ होंदा है। लोभ वासना हंकार सारा जीवन दी लालसा तो शुरू होंदा है। जितनी जीवन दी लालसा उतना हंकारी, जितनी जीवन दी लालसा उतना लोभी, जितनी जीवन दी लालसा उतना वासना दे ग्रसिया होया, जितना मौत दा ज्ञान उतना बैरागी, जितना मौत दा ज्ञान उतना सतवादी, जितना मौत दा ज्ञान उतना आत्मदर्शी। धर्म दा ज्ञान शुरू होंदा है मौत दे ज्ञान तो। सतगुरु कहिंदे ने, मैं दिल नूं समझा रहा, सब नासवंत है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐ मेरे दिल, ये सच करके जान, ये मैं चंगी तरह तहकीकात करके वेख लिया, छान बीन करके देख लिया, सब कुछ नासवंत है, सब कुछ नासवंत है। ऐ मेरे दिल, सच्चा जान केवल उसनों, वड्डा जान केवल उस परिपूर्ण परमात्मा। हाँ जी।

यीशु साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कोमो की पेशेंस का टेस्ट

पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। ऐसा बाणी दा बाण लगया पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गए। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो ठीक ही कीता होगा, जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा जिहड़ा मेरा पैर टुट गया है ना, इस टुटे पैर का मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मनदा जो मेरा पैर टुट गया। हद हो गई, पैर टुट गया तो टुटे पैर का एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमें ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइये ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल दे च रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है, जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नूं बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखदे आ, पर इक्को ही दिन महात्मा बुद्ध ने जिहदा नां सिधारथ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुरदे असी भी देखदे आ, इक्को दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखदे आ, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखदे आ। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखिया, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहिंदे हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आउंदी है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप दे च महसूस करता है, संवेदना। असी भी देखदे आ बुढ़िया नू, असी भी देखदे आ बीमारां नू, खुद भी बीमार होंदे आ, असी भी मुरदियां नूं देखिया होवेगा, इक्को ही दफा देख के चोट लग गई। या तो अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ़ सी दिवालिया हो गया, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा, ऐसी हाँ।

0: tonight.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
3: ताव तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छवा सके न कोई।